0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

हम और शराबे हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग अमन।

रेडियो अमन करक हैंड रेडियो अमन ठाक जी वो था जी रोजाना 11-12 बजे पूरे सिफार कश्मीर पाकिस्तान की तरफ ना है आप चला शांति प्रोग्राम इसके और इधर की सरंग उम्मीद से बिल्कुल फिट फाट जैक जोड़ खुश खुशहाल खुश तबियत खुश मिजाज इज्जत पलमन के खबल जिंदगी खबल जो छिदा मजो सर तेरे उम्मीद तो रहे 24 घंटे में छिदे आप डे ऋषि तिरषि हुई और उम्मीद दे शेष होता है बिचार दे सो खुश और इधर खो निम गोड़ी जन वफाओ कला रेडियो मन करक स्टूडियो ना लाइव यहाँ जी छिदा प्रोग्राम तो से लाइव बोर वाय और दिठान चीज तुम रहा आगा स्वीट हैंड क्यूट लिसनर देखे ना आगो तक रखे ठेट वेलकम जी सिफात का कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान का फैमिली के हाँ ठेट वेलकम के बुला थरा गर्मा 12 बजे बोरे हाउ दग खुश शांति प्रोग्राम से दात उसते पर पेश की जी सिफात का कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दे तरफ ना जी सरंगे प्रोग्राम खुश दगे ना दासे बिल्कुल जे सम रहा प्रोडक्ट के ना आगा खडीर खुश खुश रे मजेदार दे जी देर बेहतरीन रिजल्ट ये दा यूजर ही जरूर इस्तेमाल कर जी बेहतरीन कंपनी मायार वाले प्रोडक्ट जी तो खुश और इधर को प्रोग्राम के वो ये जी खबर याद था रे कब शब बहाल है कि उसे काल तब है टाइमर को तो उसे मैसेज इसी दिन आप हाँ शब मिला हुजी टैंक वाला है इधर की सरंग दी स्पेशली जी जी फरुन क्या ना फरुन फरुन फरुन बस वही बेली भी क्या ना खो खैर कले कले पकी दासी भी शाम कले कले दासी भी आओ करक वाला सुन आओ रिदुन की दे आसरंग दे जे और करक वाला जिस रहा रिदुन की दे ना स्पेशली टैंक वाला है रिदुन की जी दे आदि मुझ मिल माने देसा मेहमान है हमारे जी खुश और इधर को सिफार कश्मीर पाकिस्तान जी सुन रहा मीनावाल दे अगोदे पूरे जी को मार्केट के चली शांत है प्रोडक्ट सीधी बिल्कुल अवेल करी जी अवेल करी दी जी अवेलेबल ले तो से छह तक है जी निजदे अखपल जनरल कॉस्मेटिक स्टोर के जैसे सिफार कॉस्मेटिक चिकन प्रोडक्ट की जरूरत भी कहना अगर पछता नहीं हुआ जी तो स्टॉक मिलाव से जी सिफार कॉस्मेटिक्स के बला शांति प्रोडक्ट सीधे का मौजूद थे और इन फ्यूचर सीधे का ना हाँ नोर एक्चुअली एक्चुअली प्रोडक्ट और राउंड दी आगा प्रोडक्ट जी जहाँ वो नवी प्रोडक्ट भी और यो नवी सिफत सराय वो भी सरंगे ची नुम दाई का ना अलको जी ये सिफत लाइक थी जी दा प्रोडक्ट चाय इस्तेमाल करी दी जी शर्फ डेढ़ जबरदस्त फीडबैक था जी और चीचा ने दी इस्तेमाल करी एक्सपीरियंस है ना कहना हाँ महा इस्तेमाल कर जी तो तब यो बेहतरीन रिजल्ट था आगा महदरोशी और नन पुदे मुने हवा खबर था वक्त है ना और जो रिदुन को बिल्कुल इंसान द स्किन चिकेम दा आगा डेर हसास था है खास करके फेस चिकेम दा मख चिकेम दा डेर जो हसास था और स्किन चिकेम दा दे इंसान दीदी सो पार्ट सी कहना दे कुदरत निजाम दा दीदी सो पार्ट सी बिल्कुल 1, 2, 3 दासे पैसा है कहना टोलो ना पोसे चिकेम पार्ट है कहना ना पोसे चिकेम सरमंद है जी दे मंदे 233 हां यानी दा डिवाइड शवा दा स्किन चिकेम दा डिवाइड शवा दा पुत्री पार्ट्स की बेदा 3 पार्ट्स चिकेम दी कहना दे 2 ब्याज होन दा खपल खपल पार्ट्स दी सही दा ते हु नहीं दी और दा टोलो ना पोसे चिकेम तह तह कहना दा डेर बारीक तहता शाह बिल्कुल फरदा शांति दामोदे हलश की पाया हुआ बिल्कुल छोरीदुन की पुदे मन पूछी जका कहना चेसना औरदुन की अहाव यही छे भाई जान मिश्र मुख्तलिफ किस्म आगा क्रीम इस्तेमाल करी थी उस तीमी जाए मख इस तरह तुरश वादा जी जहरी स्पिन हो जी उस तोड़ दा बदे वजह मनन पाया हुआ जी जुनून बेपो के छे दा सरंगे दा वजह सरंगे की दलाई छे कला हमेशा मिजदा खबर है कहू تو سے جی دیکھبل زون دے بھرا آغا دی تشی ہاں انتحاب کوئے ہمیشہ دا کوشش کوئے چھے انسان دی خبز زون دے پرائی تشی ہاں انتحاب کوئے نو آغا دی دیر ششی انتحاب کوئے کل ہاں دیکھ سوشی انتحاب نہ کوئے او بیا سکین چونکہ دیر حساس تا او مخ چی داغا خود دیر حساس تا کل چھے انسان مخ خروب بھی کنا چاہتا سامنا نشی کولا یعنی دا شرمی جی تو خبر ہے مکولا کنا چھے ہمیشہ مجھ دا خبر ہے کوئی چھے تو سے کلا ہاں خاص کر کے دے مخ دے برا اگا تو سے دے کریمو انتحاب کوئے اگا تو سے دے فیسواش انتحاب کوئے تو بہترین کمپنی گو رہے حیر دائے 10-15 روپے دے کاغا فرق بھی کنا یعنی لشکی 10-15 روپے فرق بھی پاکے اس خبر ہے نہ دو دا 10-15 روپے 20 روپے کنا دا دے تو سے مخ نزیوتے ندی نو آغا سرنگی وجہ کی دلشی چی باز اردن کی راز بھائی مجھ کو لگائی دا سے کریم استعمال کر دا سے کریم استعمال کر اس مو مخ مو لشکی سپین خوشحال خو سمو دا پاس جی مخ مو تور شوال

अच्छा नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है बेलाता जवन दे भला ग्रांदे बेलाता जवन भला ग्रांदे पसरो लंबोखी में गुजरान दे ओ हाल में बखपलो ओह को ग्रांदे जनाना गम दे मुसलमान दे ओ मादा मुला द भांग नमक के पास अवीना है मैसेज मुकट छे वो तो चूंकि जहां दामो तयो तो यो जहान मना दे मैसेज का बोलो भाई सलाम भाई जानी कैसे हो चोला जवाब है आई एम खुशी खान खटक फ्रॉम करक जी खुशी यो जहान मनना दे मैसेज का बोलो भाई जी अस्सलाम वालेकुम जो उजाला शाफिया दे मंगल में लेना।

हो खिची झाला शेफी ते मंगल मेले ना यो जहान मानना है मंगल मेले के वो तो उस्ताद सिफात चिसमरा हाँ प्रोडक्ट है अगा मंगल मेले के जी तो मिलावी जी मौलाना अब्दुल हालिक से वही छे रिफा थाटा कवी छे राज भाई का टाइम था मिला शवाल का ना बिया आहिर के सो शिरुना रोता हुआ या शिरुना जीदी का ना देता मैं इतवार रेस चेदा अगा मुख्तस कड़े दा इतवार पर इस बुडे डे शिरुना भी आयो हो बिया हाँ कटेम रोता मिला शवा रिफा तवा रिफा यो जहान मनना जी रकीब खटक वैसे दूसरों का हक मार कर अच्छा ओके जी वैसे बादाम और काजू खाने वाले आखिर में सिर्फ दवाया ही खाते हैं वाह वाह रकीबो यो जहान मनना नेक्स्ट मिस्टर रुचा कर दा वैसे सिफात प्रोडक्ट अच्छा सही सही दो मोस्ट बिल्कुल एड्रेस से शामिल कर दी यो जहान मनना थैंक यू मैसेज रोना लोड़ा लो जी गायब शोलो शाह मैसेज रोना गायब शोलो

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

0: मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता
1: हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ,
2: लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।

0: जिंदगी और मौत के किस दौराहे पर आप खड़े हुए थे जहाँ पर आपने अपनी बेटी को खून बहाने दे दिया?
1: उसे उसकी मोहब्बत दिला दे।

0: आपने कहा था ना कि आपने मुझे बेच दिया।
1: जबरदस्ती आपने अपनी रवायतों की नकेल डाल दी इनकी नाक में।
2: इश्क मशहूक की आदत तो खानदानी है इसकी।
3: फिर किसी और की इज्जत हो भी नहीं सकती, सिर्फ मेरी इज्जत।
4: तो उठकेगी इंसान।
5: हम अपनी इज्जत के लिए अपना सर कुर्बान कर देते हैं।

0: देखिए जिंदगी एक पहेली 31 अक्टूबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: ये बेटी का घर कौन सा है?
2: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या जब एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना ना खर पावी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले परसो ए मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला भी जी
2: मनु ख्याल साथम द कोर कार और मशमानु सरसरा द खावन और सर खवाखी खिजमत को द कंपोज चे जमा दुमर डेर मसूफियत थी चे जान द ख्याल साथलो द बरा सर बिल्कुल टाइम ना मिला भी जी और जमा स्किन डेर ज्यादा खराब शवे दे पमखमी दाने दागुना तिरसरी और दस्तर गुलांदी गिर पेर हल्के जोड़ शवे और इंतहाई परेशान है माव पर टीवी और पर रेडियो द मुख्तलिफो क्रीमोनो सिफतुन और इधर कुछ इस्तेमाल में कड़ल नुहिस फायदा इरा तरा नकड़ा ब्यामाते जमा मिल गिरे द एश्मा ब्यूटी क्रीम मशवरा राकड़ा कुम सर ची जमा द मखन दागुना तिरसरी जुरियाने दस्तर गुलांदी हल्के दास खत्म शुए ची माता पखपल हम यकीन नाराजी उस जमा कोरवाला जमा द कार सरसरा जमा द हुसन और सफा मखम देर सिफत कवि जद अखबल तरफ टोल खोइन तदा मशवरा वर कुम ची सिर्फ और सिर्फ एश्मा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे कगवाड़े हकीकी खुला लुरावड़े सिर्फ और सिर्फ एश्मा ब्यूटी क्रीम द हुसन और खुला राज एश्मा ब्यूटी क्रीम एश्मा ब्यूटी

0: है खूबसूरत बन जाए जब साफ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: दहर झुड़ा आवाज रेडियो अमन आवाज रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क पारा दगशान मलमती पर चेतस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस्तासो सरयो रेडियो मन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।

Σε τους μέσες που τρώμε ένα προγράμμα και τους μέσες που είσαι Χαζί, ρεκί πατέκ, μέσες κρατάνε, ρεκί πατέκ σε βιαί. Ρεκί πατέκ, ατσαζί, μέσες δεν πατανίστα, μια... Σε और रखी पटकी द मलिक सिंह जी जेल चौक करकना और तमाम नए लेसर और पुराने लेसर को स्पेशली टांक वालों को अच्छा जी अपने प्यारे रियोमन शो में वेलकम कहता हूँ. अच्छा जी हाँ जी सही दादा मैसेज को दे देर लेट और वाला ही जाए हाँ जी ब्याह डेरा मनना रखी पटक प्रोग्राम के मैसेज को वाले और यही कहना चाहिए छा मैसेज कर मैसेज दे रहा है. अच्छा जी सलाम भाई संग मंग चल दे भाई माई सलाम टू क्यू टू रिहान सुम्बल वजीर सनाई फातिमा वजीर सनाई नादिया बहार एंड नादिया एंड राबिया बोम बोम जलाल हाम नाइशना ओमेमा सुमेमा नोर एंड एनी उजाला मुलवत आईना हचक मलिक जवेरिया और मलकिल मसई निहान मलकिल मसई छोटी महवेश छोटी मरवा अन्नम मैसूद मुस्कान हटक हफ्स हटक वैसे आयम आमर हटक ठीक छोड़ेरा मने ना थैंक यू अमरा हटक लोया हजर से मैसेज के बोले डेरा डेरा मने ना अरे की बचक ब्याह मैसेज के डाई डेरा मने ना अभी एक ना ची अच्छा जी ठीक शो सही मैंने सोचा चलो आज सही ठीक शो बिल्कुल वेल है ना डेरा मनाना रखी पटक उठाकर पेंग दे अपनी जिंदगी से हर उस शख्स को जो आपके जहनी सुकून के लिए खतरा है. डेरा मना रखी पटक ये दुनिया सिर्फ बातों की हद तक मुखलिस है हकीकत में हर शख्स अपनी जात का वफादार है. डेरा मनाना रखी पटक बिल्कुल सही खबर दो. सलाम जी मैं अनाया हटक मोस्ट सेकंड ईयर एग्जाम वर्ष आर जे जुड़ेज जुड़दाइश खमहा ओ या प्रोग्राम की अर्थावे भाई जान सही था. डेरा मनाना थैंक यू अनाया हटक प्रोग्राम के मैसेज कहो ले तो वेल एन से जुड़ दला जरूर होमोक वाला दाम मशुरा उधर था ठीक शुआ छे मतलब वही कहना था सेकंड ईयर एग्जाम द वर्ष औदे ने लवा रिजल्ट चुकम दिया नजर वाले मतलब अमल नमा दिया नजर वाली है नमक वाले दा मशवरा दरता है छी मतलब स्टडी कंप्लीट का टिक शो बाकी आर जुड़दल आसान है बरदा सही दा औदे ने बिल्कुल लदा हबर छी दस डियर मेल और फीमेल चिकम दी चागा मतलब आर जी जुड़दल वाड़ी नो बिल्कुल आगा जुड़ दे छी रेडी अमन ज्वाइन करवली छी आगे तो पर बिल्कुल ऑफिशियल नंबर चुकुम दया बने तो सो चुकुम व्हाट्सएप तय बने अखबला सीर लटलाई से ठीक सो ऑफिशियल नंबर चुकुम दे बने व्हाट्सएप मौजूद दे और दे बने तो अखबला सी भी चुकुम दो आगा जरूर लटले से और इंशाल्लाह रेडियो अमन चुकुम टीम दे रेडियो अमन मैनेजमेंट आवे तो सरा जरूर कांटेक्ट करी और नंबर ऑफिशियल नंबर चुकुम दे आगा दे 0345 933 2580 ठीक शो 0345 933 2580 यानी कि 0345 93 32 85 या 0345 933 2580 दे बने व्हाट्सएप ते नोखपला सी जुगमदा जरूर लजले छे सुखा रेडियो अमन करक ज्वाइन कवल होड़ी नो रेडियो अमन दरवाजे जुगम दिया वरत कोलाव दी मिज मोस्ट वेलकम वरत वे सही ना बाई चपे डेडिकेटेड फॉर यो प्रोग्राम द हर चा प्रोग्राम द हर चा फन कवी द तरिकान प्रोग्राम को रुना कतलवीना ओ माई गॉड आई एम आमरा हटक एंड आर्मा हटक
डेरा मनना लोया खजशी द्वेरे लोया खजशी डेरा मनना मैसेज को बोले आओ देना लोमा बिची भाई जो अफरीनियमा ताता सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना अफरीन मैसेज को बोले डेरा डेरा मनना वैच बल मैसेज बोले मोता संदर अपले का सुंगर तपले का शाटिक शो बाज दर तपले का वालश की इंतजार रुका जी दिन लवा सलाम एंड मोस्ट वेलकम तरीखान हमर यो गुड मोजिगर एंड शी इज वेरी नाइस आई एम जनत वजीर फ्रॉम जुमेल सलाम टू ऑल सिस्टर सही वालेकुम सलाम डेरा मनना तो सब प्रोग्राम के वेलकम डेरा वरजे बाद यो जहान मनना जनत वजीर मैसेज खोले ब्याह मैसेज करने दें आई एम जनत वजीर विद मी माय कजन दुआगुल

0: है जी, खुशिफा कंपनी, शिफा ब्यूटी क्रीम, दुन्ने दुगीना डबीना तार शरीरार सखतम कभी दे तुझे मख पीना भी दे तुझे दे मखना हर सा जी बिल्कुल खत्म कभी दे तुझे देशाओ दे गुंदे स्पिन स्पिन स्पिन बिल्कुल तक स्पिन जुड़ा भी जी
1: सर्दी टिट नुकरो पदेश भी गुनांगारा
0: अल्लाह मुदा माफ की।

अच्छा जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी बिल्कुल अक्षल ये टपे तो सार वेदले जी गिराना टपे हुए जी उबिद लारा चो खांदो में वरना फसता है खुईवा वरा कर पाई दो शवी दो वरा कवा खो डेर वरे से वर कवा दे वरा के ऐलान मोहा पर से कड़ाई हुआ खो चाहता है पाता ना लगे रहे चो वर का पकिम तरा पुआर का शवी दो खो आगा वरा कर पाई दो शवी दूर से खचे दा वरा के ना खबर है उरु दा वरा का वरा का शवी चेरे हुआ का ना जी अतु सवे आउस पेशा नहीं अस्सलाम वालेकुम

जी तो दीपा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए। कचेरे दिमाग दुनी दुगीना डबीना तरसरी लरया दिमाग स्पिनावल दिशाउदे गुंदे गुड़ाई कमख बुंदे हर किस्म मसाले खत्म कवल गुड़ाई नुखुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की साबुन उखलाए वगैरह सा मकसदान रसा तुसे क्रीमिना और वैसा है वो क्रीम आगा क्रीम चेकीम तुसे ता फायदा दिर की तुसे ता फायदा दिर की ओप फायदा है पुईशे को युवा खबर अदर तक वा खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम खुजिफा कंपनी शिफा चिकिम विटामिन सी फेस वाश या दवरी जे फेस वाश दाए आगाओ तुसे ता गारंटेड फायदा दिर कवि कदेर ये नकड़ा पैसे वापस उखलाए आओ देसार विश्तु ने तेल बदन दर्दे वर कवा लेते खुजिफा कंपनी शिफा तेल जरूर इस्तेमाल करे दाओ तुसे ता फायदा दिर कवि फायदा तो सीता मिला तो पसार विष्टोन बुंदे वाला गवाई बदन दर्दी ना दे दिया गौर सरा खत्म से खुजिफा कंपनी स्किन पॉलिश दाद तुसे दे पुराई तोहफा दो बिल्कुल सफा कवि शर्दिया स्पिनावी जरूर इस्तेमाल करेंजिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश शैम्पू खास इस्तेमाल आसे हाँ इस्तेमाल तुसे पपुर शो डेरे शैम्पू है तुसे बार मलके नरगोड़ इस्ता बानी बजुर से करक बजुर से नवरंग बजुर से मुख्तलिफ बजुरीना से खलिस्ता है और कुर्ता इस्तेमाल दे पुरा फायदा है नश्ता खुजिफा कंपनी शिफा सिक्किम शैम्पू दी अगर यू से यू इस्तेमाल ही किया दाओ दे तुसे सर्विस तो उनका फायदा दे कभी बदन सफ़ी बदन ना खुशबू दाओ खबर नस्से इस्तेमाल ही कीजिए अरे प्रोडक्ट ना फायदा होगा मधुर पी दोष वाला आगे सारा खबर है अस्सलाम वालेकुम तड़िया माशा बिल्कुल सर सही अल्लाह फजल दुने तुझी तसरंगे ये शाही है जर ये चेरे और कावे पाता देना लगे था काल दे नरो से उरेजे ना खुडेर उरेजे वोश विजे तू काल ना देर गला इनन देर गए खेर वहां पता शो बंदे उजड़ा शीन क्या है ना खुचे उस खाम खा खुदाई जड़ा देर कड़ाई देखो यावे शीन का वे यावे बिया बेखीना शीन का वे उदा जड़ा शीन की जी सरांगे पदा में पुई का जोर दे जी खुदा से वक़्त पकी में खबर है किसे बुंदे लश्की दास से क्या करना चाहिए पता कुर्से पीवानी में खबर बुंदे काम जुड़ा खुरा भी आएगा ना बद मुंह पकाल बुंदे लश्की डेर जुड़ा खुरा पदक टेम से भी खेर शी खुदाई खेर को शाह वजह के नोरा नवी तजाद सर ओड़ी दिन हाँ मसला है तू पता रफ्त है मु तरफ इस मसला नश्ता और विदिन की देवूज उर भी खबर उर भी सालों में सोशा इच्छा था के वही का हाँ जी देवूज मिश्ता अरसी हाँ खुदा से अरसी लगाना चरसी का ना दे कल कॉले डेरा मनना हाँ नो बिल्कुल जी दे तुसे लाइव कालो खली हाँ पसे फर 330 से फर 344 717 बंदे और बल कलर रोख ली दा वक्त मिश सरा पलाइन बंदे सुखते किम जी ने कॉल कराई सवे लोगोड़े अस्सलाम वालेकुम खबर क्या है ठीक ठाक आवाज दे वेले काम दे ना खैर खैर आता है जी तासो सही हो बिल्कुल आवाज देर सी क्या ना देर से सरंगे हेलो

जी बिल्कुल, जिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश डायरेक्ट पिंजलास मिनट से और पलास मिनट से तुझे।

0: Τώρα μαζί με ζει, τάρτο βγαίνει για πάντα σαπάρ, σε τάσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πα σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, έχω χαστηθεί.
0: Έσμα washing powder, μάρα με ζει, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γκυλέ με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βορειβόλ σε ρικρέτη, ω τόλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलसे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ता मिला भी जी

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।